महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे।

0: तरुणांनी लक्षात घेतलं की आपल्यालाही केव्हा तरी म्हातारं व्हायचंय, तर ही तेढ दूर होईल. संसाराच्या नावेची तरुण ही शिड, तर म्हातारे हे भरतड आहे. दोघांची गरज आहे, पण वृद्ध माग पाहायला तयार नाहीत, तर तरुण दूरवर पाहू शकत नाहीत.
1: हाय, मी आरजे स्वरा. आपण ट्यून केलंय रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
2: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी नशे में है. किसी को पद का नशा है, किसी को पैसे का, तो किसी को अपनी खूबसूरती का. लेकिन इन नशों की एक ही समस्या है, ये आज चढ़ते हैं और कल उतर आते हैं. और जब नशा उतरता है तो इंसान पहले से ज़्यादा खाली महसूस करता है. पर कबीर साहब आज हमें एक ऐसे नशे के बारे में बता रहे हैं जो एक बार चढ़ जाए तो फिर कभी नहीं उतरता. वह शराब का नहीं, वो शराबन अर्थात परमात्मा का नशा है. आइए जानते हैं उस दिव्य खुमारी के बारे में जिसे चखने के बाद इंसान का खुद पर भी काबू नहीं रहता. हरी रस पिया जानिए, जब कबहू न जाई खुमार.

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, हरी रस पिया जानिए जे कबहू न जाई खुमार। दुनिया के नशे तो प्याली के खत्म होते ही उतर जाते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रेम का प्याला तो ऐसा है कि जिसे पीकर आदमी खुद को ही भूल जाता है। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए, एक होती है प्यास और एक होती है तृप्ति। जब तक हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हम प्यासे हैं, लेकिन जब कोई उस परमात्मा के रस को चख लेता है तो उसकी हालत वैसी हो जाती है जैसे नदी जब तक बहती हैं तब तक शोर करती हैं, पत्थरों से टकराती हैं, लेकिन जैसे ही वह समंदर में समा जाती हैं सब शोर शांत हो जाता है। मैमनता घुमत फिरे, जैसे समंदर में मिलने के बाद नदी का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं बचता, वैसे ही एक साधक उस आनंद के सागर में डूबकर मदमस्त हो जाता है। ना ही तन की सार, इसे अब इस बात की फिक्र नहीं कि दुनिया उसे देख रही है या उसे कोस रही है। वह तो उस संगीत को सुन रहा है जो केवल उसके भीतर बज रहा है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुककर गौर कीजिए, हम सब भाग तो रहे हैं पर क्या हमारे पास वो ठहराव है जो आनंद से आता है? हमारी अकड़ अक्सर हमारी असुरक्षा से आती है। हमें डर लगता है कि कोई हमें छोटा ना समझ ले, इसलिए हम तन कर खड़े रहते हैं। लेकिन जिसके भीतर हरी रस की खुमारी है, उसे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। आज कोशिश कीजिए उस मस्ती को ढूंढने की जो आपको पद या आपकी पदवी से नहीं बल्कि आपके होने से आती है। थोड़ा वक्त निकालिए उस शांति के लिए जो आपके भीतर ही मौजूद हैं। याद रखिए, जब आप उस असीम आनंद से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी वैसे ही लगती हैं जैसे समंदर की सतह पर उठने वाली छोटी सी लहर। मस्त रहिए, क्योंकि असली अमीरी जेब में नहीं उस रूहानी खुमारी में है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आहे आरजे विभूति आणि आपण ऐकत आहात रेडियो मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।

0: ได้ऑल इंडिया रेडियो मध्ये ब्रेक होतोय तुमचा आवाज. बर बर ऐकवते. हॅलो मनभावन.
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ.
0: जी नमस्ते, स्वागत है आपका हेलो मनभावन कार्यक्रम में.
1: और मैडम मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं, लेकिन मौसम यहाँ बिहार है, उमस गर्मी है मैडम, धूप तेज है, छाया में खड़ा हूँ, हवा बंद हो जाता है तो गर्म लगता है, हवा चलता है तो ठंडा लगता है, और यहाँ पर मतलब कि हल्का हल्का हवा चल रहा है मैडम. अब दिसंबर के मनोरंजन के साथ में अपने पसंद के गीत बताता हूँ. फिल्म का नाम है ये क्या बोलते हैं, तीन देवियां, और गीत के बोल है लिखा है तेरी आंखों में, गायक किशोर कुमार लता मंगेशकर. अब दिसंबर के मनोरंजन के साथ में अपने पसंद के गीत बताता हूँ. फिल्म का नाम है ये क्या बोलते हैं, तीन देवियां, और गीत के बोल है लिखा है तेरी आंखों में, गायक किशोर कुमार लता मंगेशकर.
0: जी.
1: और सबसे पहले गीत आपको डेडिकेट कर रहा हूँ.
0: धन्यवाद.
1: रेडियो मन भवन में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को डेडिकेट कर रहा हूँ मैडम. हेलो एकता रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को डेडिकेट कर रहा हूँ, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को डेडिकेट कर रहा हूँ.

0: हेलो
1: हेलो,
0: भवन।
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार।
1: बहन जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका मन भवन कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद बहन जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं।
0: जी धन्यवाद। कहिए फरमाइश।
1: बहन जी, फिल्म है असली नकली, उसमें लता जी का गाया गीत है,
0: जी
1: तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर।
0: वाह।
1: बहुत ही प्यारा सा गीत है, तो ये सुनवा दीजिए बहन जी आज।
0: जरूर सुनाती हूँ। धन्यवाद कॉल करने के लिए। क्या
1: धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद।
0: करते हैं सर जी आप?
1: बहन जी, मैं अभी सेवा मुक्त हूँ और चिंता मुक्त हूँ, आनंद लेते हैं जीवन का, खूब मजे में रहते हैं।
0: क्या बात बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए।
1: हाँ, शुक्रिया जी, शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मन भवन,
0: हेलो मन नमस्कार।
1: नमस्ते जी।
0: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
1: स्वागत है आपका, कहिए फरमाइश।
0: और आप कैसी हैं आकाशवाणी टीम के सदस्य?
1: सभी बढ़िया है, मजे में है।
0: और गर्मी का मजा ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। सुना दीजिए गाना, धर्म करम तू कहाँ गई थी तेरा मर जाए सावरिया।
1: धर्म
0: जी
1: करम फिल्म से। अच्छा,
0: तू कहाँ गई तेरा मर जाए सावरिया, किशोर लता जी की आवाज।
1: तू कहाँ गई तेरा मर जाए सावरिया। जी सुनाती हूँ आपका मनपसंद गाना।
0: आपके लिए सभी श्रोताओं को सुनवा दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: पीजे सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: जज्जा

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखान देश, आप ली मानसर।
1: क्या कहा?

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, हरी रस पिया जानिए, जे कबहू न जाई खुमार। दुनिया के नशे तो प्याली के खत्म होते ही उतर जाते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रेम का प्याला तो ऐसा है कि जिसे पीकर आदमी खुद को ही भूल जाता है। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए, एक होती है प्यास और एक होती है तृप्ति। जब तक हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हम प्यासे हैं, लेकिन जब कोई उस परमात्मा के रस को चख लेता है तो उसकी हालत वैसी हो जाती है जैसे नदी जब तक बहती हैं तब तक शोर करती हैं, पत्थरों से टकराती हैं, लेकिन जैसे ही वह समंदर में समा जाती हैं सब शोर शांत हो जाता है। मैमंता घुमत फिरे, जैसे समंदर में मिलने के बाद नदी का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं बचता, वैसे ही एक साधक उस आनंद के सागर में डूबकर मदमस्त हो जाता है, ना ही तन की सार। इसे अब इस बात की फिक्र नहीं कि दुनिया उसे देख रही है या उसे कोस रही है, वह तो उस संगीत को सुन रहा है जो केवल उसके भीतर बज रहा है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा रुककर गौर कीजिए, हम सब भाग तो रहे हैं पर क्या हमारे पास वो ठहराव है जो आनंद से आता है? हमारी अकड़ अक्सर हमारी असुरक्षा से आती है, हमें डर लगता है कि कोई हमें छोटा ना समझ ले, इसलिए हम तन कर खड़े रहते हैं। लेकिन जिसके भीतर हरी रस की खुमारी है, उसे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। आज कोशिश कीजिए उस मस्ती को ढूंढने की जो आपको पद या आपकी पदवी से नहीं बल्कि आपके होने से आती है। थोड़ा वक्त निकालिए उस शांति के लिए जो आपके भीतर ही मौजूद हैं। याद रखिए, जब आप उस असीम आनंद से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी वैसे ही लगती हैं जैसे समंदर की सतह पर उठने वाली छोटी सी लहर। मस्त रहिए, क्योंकि असली अमीरी जेब में नहीं उस रूहानी खुमारी में है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: 그래.
1: 아니,
0: ആകാശവാണി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ മതി ബ്രേക്ക് ഹോത്തോ തുമച്ച ആവാജ
2: हेलो मनभावन
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
2: जी नमस्ते, स्वागत है आपका हेलो मनभावन कार्यक्रम में।
3: और मैडम मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक है, लेकिन मौसम यहाँ बेहाल है, उमस गर्मी है मैडम, धूप तेज है, छाया में खड़ा हूँ, हवा बंद हो जाता है तो गर्म लगता है, हवा चलता है तो ठंडा लगता है, और यहाँ पर मतलब की हल्का हल्का हवा चल रहा है मैडम। अब दिसंबर के मनोरंजन के साथ में अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है ये क्या बोलते हैं, तीन देवियाँ, और गीत के बोल है लिखा है तेरी आंखों में, गायक किशोर कुमार लता मंगेशकर
2: जी।
3: और सबसे पहले गीत आपको डेडिकेट कर रहा हूँ।
2: धन्यवाद।
3: रेडियो मन भवन में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को जुड़ेट करो मैडम। हेलो एकता रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को जुड़ेट कराओ, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को जुड़ेट कराओ।

0: हेलो
1: हेलो,
0: धवन।
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार।
1: बहन जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका मन भवन कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद बहन जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं।
0: जी धन्यवाद। कहिए फरमाइश।
1: बहन जी, फिल्म है असली नकली, उसमें लता जी का गाया गीत है, तेरा
0: जी
1: मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर।
0: वाह।
1: बहुत ही
0: और
1: प्यारा सा
0: जरूर
1: गीत है, तो ये सुनवा दीजिए बहन जी आज।
0: सुनाती हूँ। धन्यवाद कॉल करने के लिए। क्या
1: धन्यवाद बहन जी,
0: करते
1: धन्यवाद।
0: हैं सर जी आप?
1: बहन जी, मैं अभी सेवा मुक्त हूँ और चिंता मुक्त हूँ, आनंद लेते हैं जीवन का, खूब मजे में रहते हैं।
0: क्या बात बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए।
1: हाँ, शुक्रिया जी, शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मन भवन,
0: हेलो मन भाव, नमस्कार।
1: नमस्ते। जी,
0: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
1: स्वागत है आपका। कहिए फरमाइश।
0: और आप कैसी हैं? आकाशवाणी टीम के सदस्य
1: सभी बढ़िया है, मजे में है।
0: और गर्मी का मजा ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। सुना दीजिए गाना, धर्म करम तू कहाँ गई थी, तेरा मर जाए सावरिया।
1: धर्म
0: जी,
1: धर्म फिल्म से। अच्छा,
0: तू कहाँ गई तेरा मर जाए सावरिया, किशोर लता जी की आवाज।
1: तू कहाँ गई तेरा मर जाए सावरिया। जी, सुनाती हूँ आपका मनपसंद गाना।
0: आपके लिए सभी श्रोताओं को सुनवा दीजिए प्लीज। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलशन बावरी। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: जो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गए

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा

रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM.

0: कहेगा,
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM. Always heart-touching.
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

देते हैं हसीनों को सलामी, यारों का चलन है गुलामी। देते हैं हसीनों को सलामी, गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: क्या तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। ओ निगाहें मस्ताना देख सम

मन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो निगाहें मस्ताना देख।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

के न रुक रुक जाना, चाहत कलबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना देख समा।